0: अलमारी लेके आया पीसी है चक्का करते हो बिल्कुल अफ़ाल भर का करा मिला फर्ज़ है नमस्कार
1: क्या तुम देख रहे हो
0: आज मैं बोलूँगा तुम सुपर करो